दीप सवय करके अरसात समुद्र की मत कहो। काट बनास्पति सगरी दिख बहु के लेखन खाज बनहो। सार सुता पकता करके जुग कोट गणेश के हाथ रखे हो। काल कृपाण ना बिनती काल कृपाण ना बिनती ना तो तुमको सब न कर बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न कूट पराद हमारे हो कूट पराद हमारे हो अनक विधि समझाओ अनक विधि समझाओ। हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम

समाधि लगा के बैठी। अमृत वेला है, सारी कुदरत विस्माद कर आकाश से तारे चमक रहे हैं। तारियां दी लो विच कोई प्यार वाला प्रेमी अपने मन के अंदर प्यार दा दीप जला के प्यारे नाल जुड़े है। इस तरह नदी दा पानी अपने प्रीतम नू मिलन वास्ते तुरिया जांदा है। इस दे अंदर आस है मिलाप की। इसी तरह जीवन आशावादी है, जीवे आशा मरे निराश। साईं दे प्यार विच ए भी किसे अगम्मी आस विच बैठा है। अमृत वेले जुड़िया है।

रखना खाली ना रहे। आओ सारे मालिक दे दर पे हाजी अलग बाबा जी वचन कर दे सन जरा गुरु नानक दे दर खाली चला जाएगा और सारा खाली रहेगा। आओ चोरी करो ते सारे हाजी अलग कीर्तन हो रहे कीर्तन दे प्यार वाले कीर्तन रिकॉर्ड कर रहे टेपा लगी कुछ बुद्धि अनुसार जो सेवक बोली जाता है वो रिकॉर्ड हो जाए। यह तो छोटी टेप है गुरु नानक पातशाह के दरबार भी वही सारी टेप लगी हुई है। जो भी गुरु कुमारी भाई इतने आता है जिस पहुना आता है वो रिकॉर्ड होया जाता है। बदले बच्चा

पर मनन भी कोई करेगा जो मन करके करेगा, मनन वही करेगा जो पिता के हुक्म सुन के समझ के कमाएगा। सुनना इस करके है समझने वास्ते, समझना इस करके है सीखने वास्ते, सीखना इस करके है मनन वास्ते। आखो भाई फिर बेनती कर दिया, सुनना इस करके है समझने वास्ते, समझना इस करके है सीखने वास्ते, सीखना इस करके है मनन वास्ते। आखो भाई जे एक पत्नी पति का हुक्म मनेगी, मनन करेगी मन करके, ते अपने पति दे प्यार दा सुख ले लेगी। लेकिन अवस्था वही है जे अगर पत्नी अपने पति दे हुक्म नु सुनेगी, समझेगी, सीखेगी, मनेगी। जे सिख गुरु दे हुक्म नु मनदा है, मनन करदा मन करके, ते सिख गुरु दा प्यार ले लेगा, गुरु सिख दे अंदर वासा कर लेगा, वो गुरसिख होएगा। पर गुरसिख भी गुरु दे हुक्म नु, गुरु दे शब्द नु सुने समझण लई, बाणी दा पाठ करे समझण लई, बाणी सुने समझण लई, समझण लई, समझे इस करके सीखण लई, सीखे इस करके मनण लई। आखो वाहिगुरु। सिर्फ पाठ ही ना करे, लेकिन पाठ करे समझण लई, समझे इस करके सीखण लई, सीखे इस करके मनण लई। मैं पाठ कर लिया पर समझिया नहीं, मैं सीखांगा की? आखो वाहिगुरु। मैं गुरु का हुक्मनामा सुन लिया पर समझिया नहीं, मैं सीखांगा की?

ते बख्शिश भी नहीं। सच है पर मनण का संबंध मन नाल है। जिन्होंने मन करके मनिया, जिन्हां दे अंदर मन विच प्रेम सी मनण लई, उन्होंने सुनिया भी मनिया भी, पर एक जुगत नाल मन कीता पाओ। आपको वाहिगुरु सुनिया मनिया मन कीता पाओ। तुसी सुनिया जे मन विच प्रेम रख के सुनिया ही नहीं, भोग पै जाएगा। आपको वाहिगुरु मनोगे की जे मन विच प्रेम रख के सुनिया ते मन विच प्रेम रख के मन लिया, फिर तो अंतरगत होता जाएगा। आखो वाहिगुरु मैल खत्म हो जाएगी, निर्मल हो जावांगे। आखो गल मनन दी, अज असी दुखी क्यों हां, सुखदाते दी गल मनदे ही नहीं। आखो वाहिगुरु अज साडे भटकना क्यों है, सुखदाते गुर परमेश्वर की गल वल तो सुनते ही नहीं, सुनते समझते नहीं, समझते मनते नहीं। आखो वाहिगुरु जेड़ा पाठ कर रहे हैं ना, एक मैं बेनती करा, मैं दुखी हां, रोगी हां, मैं डॉक्टर कोल गया, डॉक्टर ने मेरी नबज फड़ ली, डॉक्टर ने नबज फड़ के मैनू मेरी बीमारी दस दिती, एक पर्ची ते मैंने दवाइयां लिख दितियां, दवाई खाण दा ढंग दसता सवेरे दुपहरे शामी, नाल दस दिती विधि। तुसी दसो कि मैं पर्ची नू हाथ विच फड़ के पाठ ही करी जावां, कि मैं डॉक्टर की पर्ची का सारा दिन पाठ करता जावां, ते दवाई सवेरे खा दुपहरे खा शामी का, सवेरे खा दुपहरे खा शामी का, लेकिन ना मैं दवाइयां लियावां ते ना मैं खावां, कि मैं उस पर्ची की आरती उतारी जावां, कि मैं उस पर्ची की जोता जगाई जावां, मैं ठीक हो जावांगा। आखो वाहिगुरु समझ की गल ऐसी कि मैं डॉक्टर की गल जिन्हें मैं नहीं समझ सकता, नहीं पढ़ सकता, किसे को समझा, डॉक्टर को समझा या किसे को समझा, फिर देखा मैं दवाई सवेरे शामी किवें खानी, विधि किवें है, परहेज की है। ठीक है मैं डॉक्टर नाल प्यार करांगा, मैं डॉक्टर का सत्कार करांगा, जिसने मेरी बीमारी लभी मेरे मन भी डॉक्टर का सत्कार होएगा, डॉक्टर की याद होएगी, डॉक्टर नाल प्यार होएगा, जिसने मेरी बीमारी लभी, लेकिन डॉक्टर भी मेरे से तां प्रसन्न होएगा जेड़ी मैं दवाई लिखी है, ये मरीज खांदा भी है कि नहीं। आखो वाहिगुरु अज साडे अंदर भटकना, असी खिजदे हां, खपदे हां, खिजदे हां, अपने आप नूं चरमी कलाउण वाला भी खिजी जांदा, हाथ विच गुटका फड़ के पाठ करदा फिर भी कल्पी ते खिज जांदा, क्यों? मेरे गुरु वैद ने, मेरे गुरु परमेश्वर ने इस मनुखता दी जमीर उची करन वास्ते, इस दी तकदीर उची करन वास्ते, इस कराए पे होए नू राहे पाउण वास्ते, किरत कर्म के विछड़े नू मुड़ के मिलाउण वास्ते, इस दा सच्चा ते सुच्चा आचरण करन लई, इस दे विच नेकी दे गुण भरन वास्ते, परपकारी मुजस्मा बनाउण वास्ते, सरबत दे भले लई इस दे अंदर सोच भरन वास्ते, मेरे गुरु परमेश्वर पूरे वैद ने डायग्नोज किया, इसकी बीमारी दसी ते नाल तुरदरगाही बाणी दे दिती। आखो वाहिगुरु तुरदरगाही बाणी, इस बाणी नू सुनी, इस बाणी नू पढ़ी, लेकिन समझण वास्ते समझी, इस करके सीखण वास्ते सीखी, इस करके मनण वास्ते, जे परमेश्वर दी बाणी ए जड़ी औखत है तेरी जमीर नू उच्चा करन वास्ते, सच्चा ते सुच्चा आचरण बनाउण लई, तेरे विछड़े होए नू मुड़ के प्रभु मिलाउण लई, तेरा किरदार उच्चा करन वास्ते, तेरा आचार उच्चा करन वास्ते, जे अगर तू परमेश्वर दी बाणी नू सुने, इस लई समझण लई समझे, इस लई सिखण लई सिखे, इस लई के मनण लई, जे तू गुरबाणी दी विचार नू छकदा जाएगा, दुखां दा नाश हो जाएगा। आखो वाहिगुरु सुखां दा प्रकाश।

लेकिन सवाल यह है जे अगर हुक्मी दे हुक्म नूं मनण दा संबंध है ते मनण दा संबंध फिर मन नाल है फिर इस मन नूं भी समझना पड़ेगा इस मन नूं समझाउण लई मेरे गुरु ने मेरे ते कृपा की थी कैसी अवपड़ी।

आवाज जिसका संबंध शब्द नाल है, शब्द मन का तत् है, आकाश शब्द का विषय है, नक सुंघता है जिसका संबंध गंध नाल है, गंध मन का तत् है, धरती गंध का विषय है, स्पर्श का काम छूना छूना का संबंध स्पर्श नाल है, स्पर्श मन का तत् है, पर हवा स्पर्श का विषय है। हम इस तरह समझ आती है मेरे गुरु ने कृपा करके बख्शिश की थी। कैसी बख्शिश? एक गल मैं स्पष्ट कह दिया, मैं अपने मन को खुद समझाना होवे मैं अपने मन नाल नहीं समझा सकता। बेशक के शरीर मेरे अंदर मेरा मन टिकया होया, मैं अपने मन नाल अपने मन नू नहीं वेख सकता। कारण की है, मेरे मन का स्वभाव ही वही है। जिस मन नाल मैं वेखना चाहना उसका स्वभाव भी वही है, जिस मन नू मैं समझना चाहना उसका स्वभाव भी वही है, जिस मन नाल मैं समझाना चाहना उसका स्वभाव भी वही है। मैं अपनी अखां नाल अपनी अखां नू नहीं वेख सकता। मेरी अखां विच पिया होया सुरमा अखां खुद नहीं वेख सकदियां। मैनू अपनी अखां नू वेखण वास्ते शीशे दी लोड़ है। मेरी अखां विच पए हुए सुरमे नू वेखण वास्ते अखां नू शीशे दी लोड़ है। जे मैं अखां वेखणियां ने शीशे दी लोड़ है। मेरियां अखां बिना शीशे तो अपनी अखां नू वेख नहीं सकदियां। मेरियां अखां बिना शीशे तो अखां विच पए हुए सुरमे नू नहीं वेख सकदियां। ते सच यह है कि मेरा मन अपने मन नू नहीं समझ सकदा, मेरा मन मेरे मन नू नहीं वेख सकदा। इस करके मैनू अपने मन नू वेखण लई गुरु दे मन दी लोड़ है। गुरु दा मन है, गुरु दा शब्द अख वाहिगुरु, गुरु दी आत्मा है, गुरु दा शब्द। मैनू अपने मन नू वेखण लई गुरु दे शब्द दी लोड़ है। इस करके मेरे मन नू समझाउण लई मैनू गुरु ने गुरु दा शब्द दिता है, सच्चे दा सच्चा शब्द दिता है। क्योंकि मन दा एक तत् है शब्द। मेरे गुरु ने मेरे ते अपार कृपा कीती, मेरे मन नू सच्चे दा सच्चा शब्द दे दिता। जदों सच्चे दा सच्चा शब्द मन नू मिल गया, जदों मन दे अंदर सच्चे दा सच्चा शब्द वस गया, सच्चे दे सच्चे शब्द नाल मन रंगिया गया, जदों मन विच सच वस गया, दूसरे तत् भी बदल गए। आखो वाहिगुरु, मेरी देखनी भी बदल गई। पहला तां मेरी देखनी विकारां वल सी, जदों सच्चे दा सच्चा शब्द मन नू मिल गया, हुण निरंकार नू वेखण लग पई। विकारां नू वेखण लई दुख सी, निरंकार नू वेखण लई सुख है। आखो वाहिगुरु, जदों अखां विकार वेखदियां सी ते दुख सी, जदों ओही नेत्र निरंकार नू वेखण लग पे ते सुख। पते पते चों, जलां चों, थलां चों, महीजल चों, जदों मन के अंदर सच्चे दा सच्चा शब्द वस गया, मेरा सुनना भी बदल गया। कच नहीं सुनता हुण सच सुनदा। आखो वाहिगुरु, कच सुनन विच दुख सी, निंदिया सुनन विच दुख सी, चुगली सुनन विच दुख सी, हुण सच्चे दे सच्चा शब्द सुनन विच सुख है। जिस सुनी मन तन हरिया हुआ। आखो वाहिगुरु, सुख है। हुण सुनो सत बाणी वाला बन गया। आखो वाहिगुरु, पहला तो बोलदा सी कूड़, दुख सी, कूड़ बोलण विच दुख सी, झूठ बोलण विच दुख सी, कबोल बोलण विच दुख सी। हुण तां सच्चे दा सच्चा शब्द बोलण लग पिया। पहला तरह तरह दे जीव दे चस्के दुख देंदे सी, रोग पैदा करदे सी, बहुत साधों दुख प्राप्त होवे। हुण तां सच्चे दा सच्चा रस पीण लग पिया, रसना राम रसायण माती। हुण तां सुंघना ही बदल गया,
ਹਰ ਚਰਨ ਕੰਬਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਤ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਸਣਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵਰਸੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜਦ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੁੱਖਾਂ ਨੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁੱਖ ਵੀ ਐਸਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁੱਠੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੰਨਣ ਹੋਇਆ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਮੇਵੇ ਖਾ ਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਰਸਾਂ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਭੋਜਨ ਛੱਕ ਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਲ ਛੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਨਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖਾ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਪੀ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਛੱਕ ਲਿਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਛੱਕਦੇ ਗਏ, ਛੱਕਦੇ ਗਏ, ਛੱਕਦੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨਾ ਘੁੜ ਤੱਕ ਛੱਕ ਗਏ, ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੇ ਚਸਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀਆਂ। ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਪਹਿਨ ਪਹਿਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤਨ ਤਾਂ ਕੀ ਟੱਕਣਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਤਨ ਤਾਂ ਕੀ ਟੱਕਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਨ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿਰ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਬਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਆਚਾਰ ਨਾਲੋਂ, ਸੱਚੇ ਆਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇਂ, ਮੰਨਣ ਕਰ ਲਵੇਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

मुड़ के नंगन होएगा ही नहीं, तेरी पत रह जाएगी, दरगाहों पत रह जाएगी। अतो वाहिगुरु, जे तू मनण कर गया, तू तो टुटिया होया सी, तू तो पाटिया होया सी, आ मैं तेन जुगत दसा, तेरा मन भगती नाल सीता जाएगा। आखो वाहिगुरु, जे तेरा मन ही भगती नाल सीता जाए फिर तो दुखां का सवाल ही नहीं पैदा होंगा। आखो वाहिगुरु, फिर तो दुखां का सवाल नहीं, दुख उन्हां दे नाल हन जिन्हां दा मन भगती नाल नहीं सीता गया। दुखी ओने भड़कदे, ओने खपदे, ओने खिचदे, ओने जिन्हां दा मन संसार नाल जुड़िया निरंकार नाल नहीं।

सुख नानक संतन की सेवा, चरण संत तोय पीवना, भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभ बनाशी कर में पाया, गुरु संत मिलाया, अखवाई।

बड़ी नजर करे जय पंडित सतगुरु पाया जय बुद्ध जन्म परमया सतगुरु सतनाया सतगुरु देवता तक उन्हें सतना लोग सुबह।

संगत हो जाए। ओदे गुणा ते मैं जिंदगी तोर लवा, मेरा मेल करा दे। बाबा दीप सिंह जी दे प्रतख दर्शन ते किते हो जान ते पता नहीं सारे भी जान के ना। हां मंगना साधु जन देओ मिलाए, बाबा दीप सिंह दे गुणा वर्गे गुण पांच पैसे दस पैसे साढ़े च भी आ जाएंगे।

ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, नाम रहो सब। माता जी चले गए, पिताजी चले गए, बाबा ही रह पे। शस्त्र विद्या सीखण लग पे, गुरबाणी दी विद्या सीखण लग पे। वेले बह के मैं रोटियां नहीं पाड़नी, होर भी कई कुछ

0: संग हर दर्शन पाया सैन नाई पुतकारिया ओए कर कर सुनिया
1: कर कर किवें सुनिया गया हिर

की पालकी आ रही है। पिछे संगतां सतनाम वाहिगुरु कर दियां आ रही हैं, अगे अगे गुरु के सिख प्यार वाले। कोई झाड़ू दे के थां साफ कर रहा है, कोई छिड़का कर रहा है, ते कोई सुंदर कपड़े विछा रहा है कि मेरा साहब जिथों आ रहा है वो भोए ते ना आवे। प्यार वालियां रूहां सेवा कर रही हैं। एक कोड़ा आके जिदे शरीर का रोम रोम कोड़ विच ग्रसिया होया, दुख विच ग्रसिया होया, आके टह पिया, महाराज मेरे ते कृपा करो, मेरे ते मेहर करो, मैं बड़ा दुखी हां, जां तां संसार तो इस दुनिया तो छुटकारा पवा दियो ते जां इस शरीर नू आरोग कर दियो। पता नहीं केड़े पापां दा फल मैं भोग रहा, ते जे तेरे चरणा विच आके भी पाप ना नसे, पाप ना दूर होए तो किथे होणगे। धन गुरु हरकिशन साहब सच्चे पातशाह जी ने जदों इस कोड़े वल नदर कीती, उस नदर तो अमृत दा मीह वसिया। वेखदियां वेखदियां ए कोड़े दा तन भी अरोग हो गया ते मन भी अरोग हो गया। कोई तन दा कोड़ तां कट लवेगा, ते जे मन विच कोड़ भरिया होया तां ओ किस कम है भाई जिदा मन कोड़ा होवे। गुरु नानक दे दर ते आके तन दा कोड़ भी कटिया जांदा है, मन दा कोड़ भी कटिया जांदा है। इस लई प्यार विच भिज के झूम के ओ फड़न

हर कृष्ण साहब सच्चे पातशाह। जदों दिल्ली आ रहे सन ता कुरुक्षेत्र दी पवित्र धरती तो लंघे ता पंडित लाल चंद जो मनिया परमनिया विद्वान सी जदों सुनिया के श्री गुरु हर कृष्ण साहब जी आ रहे हैं ते बाल अवस्था है विद्या दा हंकार होन करके कहन लगा एक बच्चा पांच सत साल दा गुरु नहीं हो सकता। चलो वेखिए पूछिए एडा लंबा नाम किवें रखा दे। द्वापर युग दे भगवान कृष्ण ने भी श्री कृष्ण नाम रखवाया है। इना ने श्री गुरु हर कृष्ण साहब रखाया ते आके जदों दर्शन कीते दर्शन करके ता मन निहाल हो गया ते पुछन लगा महाराज भई भगवान कृष्ण द्वापर युग दे अवतार होए हन उना ने श्री कृष्ण नाम रखाया सी और गीता दा उचारण कीता सी ते आपदा नाम भी श्री गुरु हर कृष्ण साहब है ते कम से कम तुसी गीता दे अर्थ ही करके विखा दियो उचारण करो श्री कम से कम गीता दे अर्थ करके विखा दियो। गुरु हर कृष्ण साहब अंतर जामी सब विद जाने ता किस पे आख सुनाइए जिना नू 14 लोकां दी खबर होवे जिना दे हिरदे विच निरंकार दी जोत जग रही होवे उना ले की मुश्किल सी। मन विच सोचिया जे मैं अर्थ कर दिते ता मन विच सोचेगा के हो सकदा है छोटे होंदियां किसे पंडित कोलों अर्थ पढ़े होन ते कहन लगे भाई असी की करने आन अर्थ तू कोई अपना बंदा लिया ये अर्थ तो ओदे कोलों भी करवा देंगे गुरु नानक दी बख्शिश नाल। उचारण करो श्री सात संगत बोलो श्री वाहिगुरु। इस पंडित ने एक चीवर मेहरा जो महामूर्ख सी जिदे मुख तो कोई शुद्ध बचन भी नहीं सी निकलता थर थरौंदा सी गल कर दिया उनू ले आया कहन लगा महाराज जे कराने जे तो एदे कोलों कराओ अर्थ। धन गुरु हर कृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी ने जो छोटी जी छड़ी हाथ विच रखदे सन ते उस जीवर दे सिर ते रखी ते अगम निगम दी उसनू सोझी हो गई ते ऐसे गीता दे अर्थ सुनाए जो पंडित ने कदे अपने जीवन विच सुने नहीं सन। ज्यों ज्यों अर्थ सुनदा है नैना तो जल जा रहा है और उस सोहनी मूर्त विचों भगवान कृष्ण दे दर्शन हो रहे हैं। उचारण करो श्री चरणा ते टह पिया महाराज मेरी भुल बख्शो मेरे ते कृपा करो। कितना ही समा पंडित लाल चंद सतगुरां दे नाल ही रहा ऐसियां बरकतां जिस पासों अर्थ कराए सी ता नाम छज्जू सी ते गुरु ने ऐसी मेहर कीती के एक मेहरा छोले पुन्नन वाला अर्थ कर देवे। पर गुरु लई ए केड़ी वड्डी गल है जदों ऐसा कौतक वेख्या ता जमीन आसमान सारे ही

तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख राश ताको बिगन न को लागे जांकी प्रभ आगे अरदास। जितने तक जमीन असमान हन भाई जो भी कोई उथो अमृत लेगा तन ते मन अरोग हो जाए।